बाबू तुमने वाले टाइम में दे देना। You are not a good father। बाबू तुम्हें संकल्प होने बोल देना।

कयों रेडियो, हजारों रेडियो कर्मी र करोड़ों नेपाली को माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIM।